रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner, TRK News Kashmir, Nasha Mukt, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket and cricket. Official radio partner, Radio Chinar 90.4 FM.

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहित।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। ये है कश्मीर, ये है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहाँ की शायरी को महसूस करना होगा। यहाँ की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहाँ की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहाँ की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रनाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। ये है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहाँ की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा

एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा हो जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तकलीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लगदी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फनपारे नहीं है बल्कि एक कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करती है। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तकलीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंगा

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गोल To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे है।
1: व्हाट्सएप पे
0: तभी
2: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।
3: ईद यूंगे किंग खान जयो हनी सिंगर

हाय, मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद, तो बहुत डर लगा है। हे वैष्णो देवी, अगर सब कुछ अच्छे से हो गया ना तो मैं विजय के साथ आपके दर्शन करने आऊँगी।

0: दीदी
1: हाँ
0: भैया आपको आई लव यू कह रहे थे
1: उससे अप्पा
2: जनरेटर चलाई यार और कमाल करता था।

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनाव बीट्स अब एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम। ढेर सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक, फन, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। बोला तो सुपर एक्साइटेड हमेशा की तरह इस लंबे विचरण के बाद मैं आ चुकी हूँ स्टूडियो में आपसे ढेर सारी बातें करने और ये जानने की ईद के दिन सही ईद के बाद आपका क्या है हाल। अब हाल और ख्यालात, हालात, जज्बात सब तुम जान पाते, एंटरटेनमेंट के सारे सारे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते हैं। अभी भी वक्त है कि ये बता दीजिए कि वही विश अधूरी तो नहीं रह गई ईद पे जो आप अब पहुँचाना चाहते हैं अपने लाउड वंस तक, या कुछ कहना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, 8899904904 पर आप कॉल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे शो पर कितना मिस किया। नंबर पता है, जज्बात मिले हैं, हालात है, ख्यालात है, अब वो तो आपको ही बताना है कि आपने कितना ज़्यादा इन्जॉय किया ईद पे। जी हाँ, माशुगा, और आपके लिए ये ट्रैक तो हाजिर है और साथ में ये भी कि बैक टू बैक सॉन्ग्स

अभी अभी आप इस शो का हिस्सा बन जाए मौका, तो फिर 2 बजे के बाद शो द नेक्स्ट डे मिलेगा। सो बैक टू बैक सॉन्ग्स एंजॉय कीजिए। आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 90.4 FM, क्योंकि ये हर दिल की धड़कन है।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 FM।

It's Vedarchadiva, only on Radio Channel 90.4 FM.

शो चुनार बीट्स अप एंजॉय कर रहे हैं ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM डी सारी बातें हो रही हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. क्योंकि बात हम करें बोथ साइड से ट्रैफिक को एलो किया जा रहा है और आप आराम से जा सकते आ सकते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं. सो बी केयरफुल, बी कॉशियस और सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएं और अपना और अपनों का ध्यान रखें क्योंकि हमारे कंधों पर एक जिम्मेदारी है, उसे हमने बखूबी निभाना पड़ता है. और गलत जगह पे ओवरटेक करना बिल्कुल गलत बात है. और अगर हम सीरियसली रियली वो कहते हैं ना कि हमें थोड़ा सा खुद को सीरियसली लेना पड़ता है और अगर हम चाहते हैं कि हम रियल लाइफ में हीरो बने तो उसके लिए हमें हीरो वाले काम भी करने हैं. गाड़ी चलानी उड़ानी नहीं, अपना अपनों का ध्यान रखना है, एंजॉय करना है. ऑन दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 FM को मुझे कुछ आप बताना चाहते हैं, हम तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं, इससे रिपीट कर रही हूँ 88999904904. आप टेक्स व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं. मैं हूं दीवा, आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM.

कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। ये है कश्मीर, ये है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहाँ की शायरी को महसूस करना होगा। यहाँ की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहाँ की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहाँ की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल हैं जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रनाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। ये है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहाँ की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तख्लीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लकड़ी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फनपारे नहीं है बल्कि एक कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करती है। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तख्लीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंगा है।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: Jeremy.
1: जी हाँ, बीट्स ऑन रिपीट शो चुनाव बीट्स आप एंजॉय कर रहे हो ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4 FM. ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल टाउन चैंपियंस, यानी कि कुछ ऐसे चैंपियंस जिनने अपने काबिलियत से, अपने स्किल्स से, अपने टैलेंट से पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो कहते हैं ना कि इट्स नॉट अबाउट छोटा बड़ा, इट्स अबाउट हमें कितना टैलेंट है और कैसे आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाते हैं और कैसे आप अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने देश का नाम रोशन कर पाते हैं। आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं और बता सकते हैं कि कोई ऐसा चैंपियन जिसको आपने देखा है ग्रो करते हुए, जिसको आपको, जिसका आपको लगता है कि सच में इनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है बहुत सारे उन चैंपियंस के लिए जो सच में चाहते हैं लाइफ में कुछ करें। और बस ये नहीं है कि हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि किसी बड़े देश में हों तो वहाँ से ही हम अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि आप चाहे तो एक छोटी सी जगह में रहकर अपने टैलेंट से पूरी दुनिया को दीवाना कर सकते हैं। उन्हीं चैंपियंस के बारे में बात हो रही है, उनकी जर्नी के बारे में बात हो रही है और हमारे पास

एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल है जिनको देखकर हमें लगता है कि नहीं भैया जी, इट्स नॉट अबाउट कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, इट्स अबाउट कि हमारे पास जो जितना भी है आज हम एक छोटी से छोटी चीज़ को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इट्स अबाउट हमारे पास जो चीज़ है उसको हम दुनिया तक पहुंचा कर उनको बता सकते हैं कि हमारा ये टैलेंट जो है काफ़ी यूनिक है और हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स, इट्स अबाउट बॉयज। दोनों ही अगर आप चाहे तो आप पूरी दुनिया को अपने टैलेंट से नचा तो नहीं सकते, बट हाँ दीवाना बना सकते हैं। बस ये कि हमें बस वो जील होनी चाहिए, बस बोलना नहीं, एक्शन से हमने उन चीज़ों को करके दिखाना है। आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। 8999049904 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनाव का हिस्सा बन जाइए।

0: Jeremy. Chinar Beats with Harshad Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

शो चुनाव बीच सब एंजॉय कर रहे हैं रेडियो चुनाव 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल टाउन चैंपियंस, क्योंकि अगर बात हम करें हमारे इंडिया में भी एक से बढ़कर एक ग्लोबल आइकन है, लेकिन उनकी शुरुआत एक छोटे से टाउन से हुई है. चाहे फिर हम मैरीकॉम की बात करें, नीरज चोपड़ा की बात करें, या फिर हमारे इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें. बहुत सारे इंडियन क्रिकेट टीम में भी जिनको हम अभी मानते हैं कि भैया जी ये तो ब्रांड है, ब्रांड युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, यानी कि एक से बढ़कर एक हमारे जो इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी एक छोटे से टाउन से शुरुआत की है और आज देखिए वो हर जुबान पे छाए हुए होते हैं. सो इट्स नॉट अबाउट कि आप कहाँ से हो, इट्स अबाउट आप में कितनी हिम्मत है, आप कितना चाहते हो खुद को रिप्रेजेंट करना, आप कितना चाहते हो अपने टैलेंट को पूरी दुनिया तक पहुंचाना. एंड इट्स नॉट अबाउट कि आप कहाँ से बिलोंग करते, इट्स अबाउट योर टैलेंट, इट्स अबाउट आप अपना टैलेंट किस हद तक और किस जील के साथ आप चाहते हैं कि सच में अपने आप को प्रूव करना और दूसरों को ये बताना कि हम में भी है एक ऐसा साइड कि कभी कभार हमें लोग बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं और हमें लगता है कि शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे. लेकिन वही है, जब हम सच में चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ करें तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता. और ऐसे ही हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने छोटे टाउन से शुरुआत की और आज वो ग्लोबल आइकन्स है. आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं और कोई ऐसी इंस्पिरेशन जो आपको लगता है कि जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया है, मुझे बताइए, शो का हिस्सा बन जाइए. 8899049904 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए. शो का हिस्सा बन जाइए. आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 90.4 FM.

ये दिल तो मेरा भी नहीं लग रहा है, लेकिन शोचनार बीट्स का वक्त आ चुका है कि हम आपको टाटा बाय बाय करते, शोचनार बीट्स को टाटा बाय बाय करते। फिलहाल के लिए मैं तो यही हूँ, शो म्यूजिक ऑन डिमांड आप इन्जॉय करेंगे, शो रेडियो गर्ल्स आप इन्जॉय करेंगे, ढेर सारी बातें होगी। सो हेयर आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं 8899-0409-04 पर कॉल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप कीजिए, अपने फेवरेट ट्रैक्स की रिक्वेस्ट भेजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

देखिए आप मत खामोश रहिए, आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं, पर उसके लिए आपने कॉल करनी है 8999-04904 पर, और उसके अलावा टेक्स्ट व्हाट्सएप आप कर सकते हैं शो का हिस्सा बन सकते हैं। और फिलहाल के लिए शो म्यूज़िक ऑन डिमांड को टाटा बाय बाय कर देते हैं, और 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आप शो रेडियो गर्ल सुनेंगे। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ असरा है, ढेर सारी बातें होंगी ऑन योर रेडियो चुनाव 91.4 FM। ढेर सारी बातें हम कर सकते हैं शो रेडियो गर्ल्स पर, क्योंकि अकेली नहीं हूँ, असरा और मैं मिलकर आपसे बहुत सारी बातें करते हैं। तो आप भी बने रहिए, शो कैसा बन जाइए, फिर से बता रही हूँ, इट्स 8999-04904, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो रेडियो गर्ल्स कैसा बन जाइए।

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

भाई नहीं आए हाय भी कर रहा है दिल, क्योंकि देखिए प्यार हमें एक ऐसे मोड़ पे ले आया है जहाँ पे शो हंगामा शुरू हो गया है और ड्रामा का शुरू होना जरूरी है। जी हाँ, मैं बताती हूँ क्या होगा। बराबर 4 तक रेडियो सुनार पे हंगामा होगा, ड्रामा होगा, क्या बजेंगे वो भी बात करेंगे और साथ में लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलता है। और एक चीज कि आते आते प्ले होता है कुछ खास, कुछ क्रेजी। मैं हूँ आस्ट्रा, शो शुरू हो चुका है हंगामा, ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और अभी अभी कुछ देर पहले शो शुरू हुआ है और अभी हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रेंडिंग क्या है, क्या लोग देखना पसंद कर रहे हैं, कौन

सी रील, कौन सी मीम अभी लोग रीपोस्ट कर रहे हैं, स्टोरीज पे अपलोड कर रहे हैं, लिप सिंकिंग और डांस रील्स बन रही हैं। चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, फेसबुक हो, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन रेडिट इज अमंगस्ट द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे बहुत सारी अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं आप, अपनी डेली लाइफ के बारे में पोस्ट करते हैं। दिस इज लेस कॉमन ऐप बट इट इज वेरी प्रोमिनेंट ऑल्सो। और अगर हम आज की बात करें तो टुडे इट्स अ ट्रैक जो एक्चुअली 2002 में रिलीज हुआ था एंड इस ट्रैक के पीछे भी एक कहानी है। अरे इश्क कमीना है, बहुत ही स्वीट स्वीट है, क्योंकि देखिए इसकी भी एक कहानी है इस ट्रैक की। दिस ट्रैक वॉज रिलीज इन 2002 और इससे पहले तो इस गाने में मेजर जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो एक तो ऐश्वर्या राय, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ वाव, और इसके अलावा SRK शाहरुख खान कास्टर थे। इससे पहले एक मूवी इन्होंने शूट की थी इन 2000, दैट वाज जोश, जहाँ पे ऐश्वर्या रॉय और SRK एक दूसरे के सिबलिंग्स थे, यानी कि भाई बहन का रोल निभा रहे हैं, एंड वो स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए ये गाना रिलीज किया गया था। क्योंकि ऐसा बॉलीवुड में कई बार हुआ है कि जो भी दो एक्टर्स साथ में किसी एक पर्टिकुलर रोल में देखे जाते हैं, खासकर जो सिबलिंग वाले रोल में देखे जाते हैं, तो वो फिर से रोमांटिक रोल में देखना इज अ लिटिल ऑफ फॉर पीपल। बट वो जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म करने के लिए लोगों को ये बताया गया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि मेरा तो दिल टूट जाता कि अगर इतने साल बाद मैं ये सुनती कि भाई हाँ SRK और ऐश्वर्या इसलिए साथ में काम नहीं करते रोमांटिक रोल्स में, क्योंकि एक किसी एक मूवी में उन्होंने सिबलिंग्स का रोल किया था। अब ये अच्छा हुआ हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, और आप भी अपने विचार शेयर कीजिए। 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, मैं मोस्ट्रा सुन रही है रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: छे मैंने बोला प्रेम छे और ये टेम छे कि हम रेलवे अपडेट के बारे में बात करें।
1: नींद नहीं आती है रातों में,
2: अरे ये तो प्रेम छे प्रेम छे प्रेम।
0: हमें भी यही आपका प्रेम खींच लाता है। बैक टू बैक ट्रैक्स के बाद बात करना जरूरी है भाई। और अभी रेलवे अपडेट्स का टाइम है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज की अपडेट यही है कि कुछ ट्रेन्स डिले हुई थी इन द मॉर्निंग बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आफ्टर ईद एवरीबडी इज हेडिंग बैक टू द स्टेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाहे काम है, कॉलेज है या ऑफिस है, सब लोग ट्रेवल कर रहे हैं। सो सुबह के कुछ जो मॉर्निंग के ट्रेन्स थे वो डिले हुए थे और उसी के चलते जो आफ्टरनून की ट्रेन है उसके लिए एक शेड्यूल प्रॉपर बनाया गया है एंड यू कैन अवेल दैट फ्रॉम द ऑफिशियल रेलवे ऐप दैट इज रेल वन। एंड मोर ओवर अगर आपको ट्रेन्स बिटवीन स्टेशंस, लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन्स यू वांट टू नो, यू कैन आल्सो गो फॉर दैट समर टाइम टेबल एज पर द शेड्यूल है एंड जो भी ट्रेन टाइमिंग्स है वो आपको मिल जाएंगी। कहाँ कौन सी ट्रेन अभी किधर है, कौन सी ट्रेन आने वाली है और कौन सी ट्रेन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि दैट इज नॉट शेड्यूल नाउ, इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको रेल वन ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगी। एंड इसके अलावा ये चीज़ भी है कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर 10-15 मिनट पहले ही पहुंचे बिकॉज इट्स गुड टू टेक प्रिकॉशंस। और ऑनेस्टली व्हेनेवर आई टेल यू गाइस कि आप लोग अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर 10-15 मिनट पहले पहुंचे, दिस इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस क्योंकि इंसान को मालूम नहीं होता कि हम ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या अनप्रेडिक्टेबल चीज आ जाए। क्योंकि रिसेंटली जब मंडे को लोग घर जा रहे थे एंड इट वॉज लाइक ऑब्वियसली ईद से पहले का रश जैसा होता है तो काफी ट्रैफिक देखा गया था। तो इट्स बेटर कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर 10-15 मिनट पहले पहुंचे। देखिए वेट करने से कुछ बुरा नहीं होता बल्कि इट्स बेटर टू वेट। मैं हूं आस्था शोयांग, गामा सुन रही है रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

जी हाँ, जो मुलाकात बाकी है बराबर चार तक, और वो विचार आप भेजिए क्योंकि रेडियो चुनाव 90.4 FM, जब तक आप विचार नहीं भेजेंगे तब तक कैसे बनेगा ये सही मेरे यार वाला रेडियो चुनाव करेंगे। और जैसा कि आज की बात हमें बाकी करनी है, जरूरी है, वारिया जरूरी चाहिए कात, मगर आज अचकात चाहिए कि अचकात करान आज इंडियन वेब सीरीज के बारे में। कौन सी ऐसी वेब सीरीज है जो लोग देख रहे हैं एंड दे हैव अ स्पेशल फैन बेस। बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है और अभी भी वक्त बाकी है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप और बन सकते हैं इस हॉटेस्ट फ्रिक्वेंसी का हिस्सा। मैं हूं अस्ट्रा, शो है हंगामा, मैं बस यूं गई और यूं वापस आई।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।
2: वेलकम है जी, अपना ही गराज है। ट्रक्का वाला गीत है जी।

हाय, मैं हूँ अच्छा और आप सुन रहे थे रेडियो सुनार 90.4 FM और अभी आप वही सुन रहे हैं 90.4 FM और अभी आप शो हंगामा सुन रहे हैं स्पेसिफिकली और 4 बजते ही शो हंगामा कहता है बाय बाय, मगर रेडियो सुनार वहीं रहता है। पर देखिए आज के लिए बस इतना ही और जाते जाते हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करना ज़रूरी है। और देखिए इतना क्रेजी वीकेंड आया हमारा, मतलब एकदम गुगली हो गई हमारी बिल्कुल। देखिए 3 दिन की छुट्टी ईद की, फिर सैटरडे आना पड़ा और संडे पर से छुट्टी, ये तो बहुत नाइंसाफी है। And I think lucky are those people जिनको सैटरडे भी छुट्टी मिली थी, और यूजुअली भी जिनके सैटरडे छुट्टी होती है वीकेंड पे बराबर छुट्टी होती है।

आई एम अ बिग फैन ऑफ छुट्टी, मुझे छुट्टियां बहुत पसंद है. आप एंड इवन इससे मुझे वो मीम याद आता है जो जेठा लाड़ का है, छुट्टी मस्त शब है छुट्टी. और देखिए अब कल छुट्टी है, इसको हम बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करें, अपने लिए कुछ करें एंड लाइक वेजिटेबल्स खाना ना भूलें, बिकॉज दिस इज़ द मेन थिंग राइट नाउ. हर कोई मटन खा रहा है बिकॉज ये ईद ही उस बारे में है, ईद उल प्रोटीन मुबारक हो. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड मेक श्योर दैट यू डू समथिंग गुड अबाउट योर संडे. एंड जाते जाते एक ऐसा ट्रैक जो मेरे दिमाग में कल दिन से गूंज रहा था. Enjoy कीजिए back to back tracks only on Radio Sonar. मैं बस आज जा रही हूँ, मंडे वापस आऊंगी. आज के लिए बस इतना ही. Signing off for today. Over and out.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

it's Vedarche Diva on your radio channel 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
3: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
4: दिल को
5: करार आ जाए
4: जब भी आए
5: सुहानी शाम,
4: दबी यादें महक जाए
5: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
5: सुनिए सुहानी शाम
4: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
5: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो टनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चिनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम।
2: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
3: हे मैं हूँ आरजे समानिया।
4: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
5: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
6: दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 एफएम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जितेंद्र की है।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जितेंद्र की।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को करा राजा।

0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर

सिगरेट, चेन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार लेकिन एक बार।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सारे ग ग म प प म ग म प प म रे म ग।
3: हाँ सा

0: ओ सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे।

मैंने खींचा आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आ हा हा। हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: और बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: आते हैं
1: मेरी जूती से
0: जूता पॉलिश करेगा आह जूता पॉलिश करेगा लेकिन तुम पर मरेगा चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।